आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी

0: वन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा

0: जन से जनसंपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये

0: यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese

0: నిజంగా ఆయన చూపిన మార్గం ఆగదు. లక్ష్యమెరగని పోరాటం ఆయనది. ఇది ఇవాళ గుర్తుకొస్తున్న కార్యక్రమంలో ప్రముఖ దర్శకులు టి కృష్ణ గారి జీవిత విశేషాలు, ఆయన దర్శకత్వం చేసిన సినిమాల నుంచి పాటలు విన్నారు. మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తూ మీ అశోక్, నమస్తే. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోలో సమయం 12 గంటలు దాటింది. వార్తల ముఖ్యాంశాలు ఇప్పుడు.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है. इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है. डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है. विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी. इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा. वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं. राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है. इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है. 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है. श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है. उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है.
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है. विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई. हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए. सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है. अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है. इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है. इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी.
1: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है. वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस

तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को सभी सखाओं को सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: हाँ, और बहुत अच्छा लगता है। अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी। बिल्कुल,
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है।
2: बिल्कुल,
1: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए।
2: बिल्कुल, तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम?
2: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
1: क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
2: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
1: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं

0: मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जेलर है वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
1: और पीछे भी खींचती है।
0: पीछे भी खींचती है, आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे
1: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
0: अच्छा,
1: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं ना, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: उनकी राय मांगते हैं। फिर वो जब हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे।
0: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं और आपका जीवन में आपके जीवन में उनका क्या स्थान है, कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया।
1: जी
0: है
1: बिल्कुल, आप बताइए।
0: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले और
1: देखो ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत करा करिए।
0: व्यंजन लेके आई
1: जी, बिल्कुल मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना उसके साथ पकौड़ों की
0: गर्मा गर्म पकौड़े मिली होती है। बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं, कई तरह के पकौड़े,
1: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
0: कौन से बेसन के, और
1: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच ले कल्पना करके उसको हम खा ले,
0: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सखी और सखा और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम।
1: बिल्कुल, एक गीत लेते हैं,
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं, और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है ना।
1: जी बिल्कुल,
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पे देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें बता देते हैं कि आप ये दवाइयां ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस चीज का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
1: जी,
0: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए, ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
1: जी।
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
1: ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना, कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही कि बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे, और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है, तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जैसे आरती आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है।
1: और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसा खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं, तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते, अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसी

0: डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके, और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर और मरीज के बीच। सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती की, हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
1: जी हाँ,
0: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ। तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे, और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
1: बिल्कुल, और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम कोई हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारे बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना हमारे शहर तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
1: बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं, कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर समय नहीं।
0: बिल्कुल, अच्छा, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
1: ये जो मौसम रहता है ना इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा भोजन,
0: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
1: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
0: ऐसा बहुत तरीके हैं खाने के,
1: बहुत अच्छा
0: तो
1: लगता है।
0: हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं, वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहे या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहे, स्वस्थ रहे।
1: तो हमारे जो श्रोता है वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है, उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
0: बिल्कुल, और भी किसी ने कुछ लिखा?
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसके बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेकर सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
0: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है, और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
0: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कम्प्लीट ग्रेजुएट हो गया है और छोटा बेटा एमबीबीएस थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
1: बहुत अच्छी बात है। तो और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
1: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है।
1: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता है जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
0: जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिरदर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहने पहनती है, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती है, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये।
1: जी, और जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता
0: है कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हाथ से और मेहनत से
0: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है। ये
1: बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। हाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना।
0: गीत तो सुन लेते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था आप कहने वाली।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ।
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारी सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ। वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना, आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो प्रतियोगिता जीवन की वो पाठ

0: डाला है, जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कॉम्पिटिशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्मविकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लें, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
0: बिल्कुल,
1: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे खुशी दे सके,
1: हाँ,
0: तो सबसे बड़ी बात ये होती है।
1: प्रतियोगिता
0: चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा
1: मजा आता है। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता
0: हो, मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसको मजबूत रखिए।
1: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं जीतने वाले हैं जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें
0: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
1: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में जो जरूरी भी है तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाक नहीं जी, अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन, और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या

0: शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
1: ऐसी तो मतलब सोच नहीं सकते,
0: बिल्कुल। इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां तीन चार तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, एक दो कटे हुए, आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए दो बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए, और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें एक बड़े उस पर, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें, और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर, और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिलाकर पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए आरती जी।
1: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि पकौड़े निकल ही
0: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
0: हाँ, हाँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
1: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
0: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया है ना।
1: मैंने कहा ना
0: कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है, और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती बहुत स्वादिष्ट लगती है, और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं, ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए, और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें, पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छम आछम बारिश में

0: गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी, तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन मिर्च अदरक भी पीस लीजिए, पीसते समय कम पानी जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी नमक बारीक कटी हुई हरी मिर्च कलौंजी अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कड़ाही में सरसों का तेल गरम करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें, और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं, और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल जो 2 चम्मच रहता है चावल वो जरूर डालें आप।
0: तो अब पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद
1: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा
1: जी।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहां मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहां तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियां, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देशी बोलियों को भी मैं जानता हूं, ठीक से उनको बोलता भी हूं। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूं, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
2: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं?
2: जी।
1: और बहुत सारी

0: थी
1: जी
0: और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
1: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
0: उसका आकाश
1: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिखकर के या फोन करके उस पर बात की थी।
0: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
1: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
0: जी।
1: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर तीन भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
0: जी।
1: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
0: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
1: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और दो तीन राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
0: जी।
1: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
0: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
1: जी,
0: मिला
1: जी।
0: तो रेड्डी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
1: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे।
0: क्या
1: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह है वो, और उनके रचनावली के 6 खंड है वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित है। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है। जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है, ये सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो। जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है, वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है यह व्यंग्य जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग्य को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग्य संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी,
1: उसके बाद दूसरा व्यंग्य संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग्य जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना, जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का, जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहां वहां फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
0: जी,
1: तीसरा जो है वो अंधे पीछे है, ये हमारी व्यवस्था में, मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है, पूरा मुहावरा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है।

0: उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया। हम आ गए मोबाइल युग में, जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कॉलम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गई, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सनिधि मेरा चौथा व्यंग संग्रह है, जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक ही बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का सनिधि। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है। उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है, उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सनिधियों में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है, वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी,
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी,
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी है, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे। कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई।
1: जी, और पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था। बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं। जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं कर लूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ। और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें

0: जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
1: जी,
0: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
1: जी।
0: जैसे आप रानी नागपनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू के राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
1: जी।
0: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
1: जी।
0: आपने मीम्स की बात की है, मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जबरदस्ती हास्य डाला गया है या ये समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
1: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
0: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
1: जी,
0: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं, वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
1: जी।
0: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
1: जी।
0: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
1: नहीं पाया। जी।
0: ऐसा लगता है कि व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें। वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है, इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं है, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास, और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है।
0: जी।
1: तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग लेखक हैं, क्या व्यंग सभी पर लिखा जा सकता है, या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं, या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता है, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है

0: जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है, वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित वंचित पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
1: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
0: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
1: मतलब वैचारिकता तो, होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी
0: चाहिए। उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं। किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: जी, हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है।
0: जी,
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है?
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं।
1: आई

0: हरिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी।
1: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है। लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है।
1: जी।
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूं जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीजें तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी, जी। एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए।
1: जी।
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
0: जी,
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है,

0: और वहाँ पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं, उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके देख करके कर सकते हैं
1: जी।
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थे। ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे
1: जी, जी।
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
1: यायावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी।

0: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
1: जी,
0: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
1: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
0: जी।
1: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
0: जी,
1: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण केवल सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूं मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है मैंने, मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं मैंने, प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं
0: जी।
1: मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
0: जी।
1: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
0: जी।
1: जी,
0: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा
1: जी
0: जोखा लिखा है।
1: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव, दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन भी इसमें आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है, क्या आप गए यात्रा किए धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपने मूल

0: चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिलाकर के मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है, मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास न हो, मुझे भूल जाता है कि यहां फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी

था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इदि आकाशवाणी आदिलाबाद 100.2 FM मनसु निंड मिरिंटनरु गिरिपदम ఆదివాసిలా పాటలు నిర్మించే కార్యక్రమం. గిరిపదం కార్యక్రమంలో ముందుగాలినుండ్రి ఇంద్రవెల్లి మండలం మోహన్ సింగ్ తాండాకు చెందిన సాప్లే బద్దేసింగ్ బృందం పాడిన శ్రీకృష్ణుడి భజనడు

0: शंकर वृंदावनम जाति मारे सावले हरि ने मना लेती भगवान ईशान चलो गो
1: पच्चा
0: राजा जीव गमे नी तू कहीं कनुक लागो भगवान तो जंगले में चलो गो कहीं करू वृंदावन एम जाती मारे सावले हरि ने मना लेती हिरणी सी आखी आम कड़ो कड़ो सुरमा जोत माई जोत जगा लेती मारे सावले हरि ने मना लेती सावले हरि ने
2: मना
0: जना कहीं रमती।

0: கிருஷ்ண பகவான் ரிசான் பம்ச
1: ரிசாகோ கிருஷ்ண
0: ராஜா மனவேன் குயம்பி குடிசை கல்யாணத்து மனம்
1: கொஞ்சம் ராஜா
0: गोरे गोरे हाचे माई लाली लाली चुड़िया गले माई मीठी मारे देती मारे सावले हरिन मना लेती मारे सावले हरिना

0: आमलेट जमीनी जेर कतरी उठान लछ बडो कागला छु
1: कोनी का
0: जना विक दे दिने वर हटेम यन पीक लागो पिले ताणी मरजो तुम्हार घरे में न रहनु लोग हासरे छ मार नाक हेड जारी करता नी बाप भांडे लागो जना काई कच हाते माई विक दे दिने
1: करो का
0: यन खाल करता जना भगवान ने हक मारी चलो आजो रे।

0: అని హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 8:45. ఇప్పుడు సమాచార సంధ్య ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార సంధ్య కే సాత్ మే ప్రియాంక అరోడా. मुख्य समाचार. सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी. विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू. केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की. सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए. जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची. कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी. भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा. अब समाचार विस्तार से. सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है.
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी. 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा. ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है. इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है. परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा. श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है. इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है.
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में. कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा. 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कम्प्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है. 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको. कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे.
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा. विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है. अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी. केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं. एक रिपोर्ट.
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी. यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है. इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा. नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है. नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी. गृह मंत्री

0: केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है।

0: आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल

अस्केद गड कचरा पो बतला तेर मन तक कराल अने जेड़म राम जी बतले जेर मन तो आहा सुड़ा नेता मोती नेड़ बाते बाते वासी रण महने गाती नेता मोती आने रोन सोता किसे ले सरारा कचुरिता वाते नेता मोती कचुरिता वाते नेता मोती आने कर ले मात्रा रोन भेटे माती से लेते के रोन भेटे मातों सोतन भाई नगा आनमान तुंगता भाई आने कर ले मात्रा ताले नांगे टोपी तालाड की तो नांगे टोपी तालाड की तन कांडी नो आगे टोपी तलाड के थे वो आगे टोपी तलाड के तुन कांडिन आज आगे टोपी तलाड के तुन ने के बता लें जर मंता बज विचार दे आगे टोपी तलाड के थे गोटे घर ले बैठे कर ले मात्रा चंद्र अकबर शाह राजा लवानूर के बता लें दानूर आज एक नैना विचार की तो और गेड़ा अमराम जी राजा ताले कोलिंग मंता आने बदे विचार दे मत खोल काली कोली मनता बागा वो सिर काय जगह विचार के तेरे मन तो

Aske salam suman ke tur salam suman ke ne ke. Ha salam suman. Net ke matar mene tam hoti nu hoti. Aane kharle dhur pul kal gaadi sauri kisi hoti. Suti kisi vaate suman suti kisi vaate. Bati bas ke vaake pa. Bas ke manje bata lalu roz manje vanto na. Bhaton bahe sudsi vanto na. Kandi nangi topi talar tato. आणि खरले मात्र मागे कांडी तो कांडीन मात्र लाट किसी वांतो नाही आणि बतल वळचे म्हणे के सलाम तो माल सुटी किसी वातो आणि चंद्र अकबर शाह राजा नेहना विचार की तो हा बे क्या था नेहना विचार की तोर ने तो मोती मात्र ने वासर से ले नेहना विचार की थी किती ते बुद्धि आतो आणि करले मात्रम रण रोज काता मुंद रोज काता नालू रोज काता सियो रोज सारो रोज काता अडबाग पंधर वाडा पाऊन माने रण माने गाता ने त मोती वासिर चले बद विचार के केन जकिन मरते बताल वर से मम तो बद विचार ते वरकान वकरने बताला सेर मन तो ने न विचार के तुर सोमान पूछ के तो हा सो सलाम सोमान आणि करले मात्र बतल हाता नेता मोतीन बाग वो सुटी की तिथे के गेडम रामजी ने किला तगा म्हणता 12,000 येणे ने किला आणि गेडम रामजी ने किला तगा आणि करले मात्र नेता मोती म्हणता बाईन मात्र सुकल झुकल पूस किसी नालू रोज की मांजे भांतो नेते ने के हार म्हणता बेहते नेना विचार की तोर नेना विचार किसी को बता ले जर्मन को नंदान तो सोमन ने मरते सोमन पूछ किसी बातल पिस्टर छोड़ा।

0: अस्के बतल के तोर चंद्र अकबर शाह राजाल आने बदे विचार बदे विचार ते आने उन्दे गोटा रे तोर उन्दे मेटा वर तोर चंद्र अकबर शाह राजाल हाँ बतल रानी महकान साटे नेता मोतीन महकान साटे बतल सोंजर मने ते ने दल उड़की कोडा ता टाप मनता गर्दाबाद बातल संजीर मनतो आधार वकार में बातल आशीर मनता वेली सी वेली साठे मातोर बिठे मातोर
1: इपड़ दांक गुड़ीहातनूर मंडलम पूनागुड़ा ग्रामान के चंदना सेडमकी रामुलु ब्रुंदम विनिपिंचिना गेडाम रामजी राजु कथागानम मूडो भागम इन्नरु ఈ కథ ఇప్పటికే మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అందుబాటులో ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళినచ్చు. మా యూట్యూబ్ ఛానల్ చిరునామా ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM. ఇది ఇయాలటి.